आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे

0: 0300-585-8480. 0300-585-8481.
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर कसम के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कसम की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860।

और बिल्कुल यकीनन खुशहाल उसी आबार उसी कदरदान उसी बेशाम रेडियो फली किस्म का आवाज लगवंद की कटिंग कई खबर हाल उसमें ठीक हुई गालिबन और मौजू आगाज लिखे उचा चाचे मुगला आवाज अपडेट रहा कर डॉक्टर सिर्फ सास क्लियर सफा दिए बस के जब पर दुआ की अल्लाह ताला रिता सुल दुनिया व खिरत कामयाबी नसीब की अल्लाह ताला रिता सुहर यो शरी हजत पूरे की टीक शोजी द मौजू आगाज लिखे हुआ जमन द प्रोग्राम मौजू न सहवाले सरदा इन शाह तासु ठू लबडीर लोई फायदा हासिल है मौजजा थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगद सर शामिल हुआ मौजज़ा से तवाई करामत से तवाई औदे बने चा उबूर हासिल वे सुख भी कुदरत लरलेशी औदाला द नबी द मौजज़ात हो तादाद सुमरदे तो योसु मौजूजे ब इंशाला दर्थनन हम बयान कुछ दाला द नबी दादा मौजूजा जी नोअल खुपदी मुंगसान फुए कुछ दा मौजूजा से तवाइया करामत से तवाइया आया आम खलक बपदी खबर मुंग संग पोहा हुआ चियरा दा मौजूजा देता हुई और करामत देता हुई दी द्वारो मेन्स की बुनियादी और डीर घट फरक दे सहीदा

0: तोल सामान
1: आओ आओ तयो चदलांदी दाहर से मिलावी की
0: वाह वाह वाह वाह ब्याखो बेलू बेलू दुकानों नो तादत लो जरूरत निष्ठा
1: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान
2: लो पतयात साथे अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नेस पीएसओ पम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
1: ओ पते दन नकलती की नो सैद खालिद शाह ओ परवेश शाह सरा पदी नंबर ओ राबिता कोलिशे 351-36-640 बल नंबर दे 0391-21-162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालेन
3: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज औरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरीउसे
4: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

फुर्सत मिले तो शाजी मैसेज रागले दे शाजी फुर्सत मिले तो इमशा भाई शो गुड़दा गुल बीबी माँ गुड़दा एजहार हाय डेर मुबारक एजहार हाशमी फ्राम बाग बुनेर ए उसको राजी वक्तु न तीर दी जमा दमख खालुना

0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन, महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ाए कराम, जदीद तदरीसी तरीक़े कार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
1: अमन दरुह संदरदा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियाद सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
1: बटग्राम हलको दफारा दो खुशहाली जेरे उस तासुला बल जाए तलो जरूरत निश्ता स्तासु पर अखपल हार बटग्राम के डेर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे दलेशी लक दाल चावल हर किस्म मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले 1 किलो मसाले सरा दो डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस और सरहम मिलावेगी दमाशुमान द पारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर्स नुबिया हम नंत शरीफ रोड़े रियास करियाना एंड जनरल स्टोर बटग्राम था और तरला सकई द कोर्टोल राशन हम पर होल सेल और हम परचून और पता याद साथे रियास करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटग्राम। दनोरो मालूमात द पारा पदे नंबर राब्ता होके असद हान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0356-32-017 और PTCL नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी।
0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजर्बाकार असातिज़ा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: یونیم سرکه باپو

0: ये सिर्फ दो चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
1: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: हलका दिलबरा दावली दा से गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओड़े दे।
3: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो औजिसम में दर्द निशी दापो पर सर चिलग नास्ता हुकम नुस्तर गिरा बंदे तोरी तूरी की गी।
2: दिलबरा नुतमात न वाय ददे मसाले खो डेर आसान हल दे।
3: अंकल जी हगस
2: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तियार दहागे पे और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंडे।
4: पावर एनर्जी टॉनिक, पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सुवजुद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमखमो तिर सरीवी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीना स्तो नपस उदरे दो सरा स्तर के तोरे तोरे के दलुल पारा इस्तेमाल

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को देगा, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: क्रिया आपने काम
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बतें समेटने का, बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: यौनिम सरोकब आपो राशालेका द्रेव सोकब राशालेका द्वितीय वाचा नेमवान वर्तम के द्वितीय दानी वाचा शब
8: या लेका सेत गानी राजा दा कबाब पमुंग बांधी डीर दी।

0: खेल और बदनामी है।
1: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे, एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारोबार किसी को कामयाब नहीं बनाता, ये सिर्फ दो चीजें देता है, जेल और बर्बादी। अपनी जिंदगी को जुर्म की कहानी नहीं, कामयाबी की मिसाल बनाएं।
2: एक ख्वाब, एक मंजिल, मंशियात से पार, पाकिस्तान।
3: हलका दिलबरा दावली दा से गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओड़े दे।
4: अंकल जी लकार
3: वर्षा और द बटाग्राम हर खो मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक खुख्याल कवा सोख दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही।
5: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक, पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल करे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहग माशुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोली हुई नुम याद साथ है पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरदा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878।
6: خودے مبیخ پدی چے وباسا
7: سچل دی ہلکا بیا دس چگی جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
6: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے را

तो बिल्कुल जनाब दादे पे मटस इशारे चार रेडियो मन बटग्राम कोलादा बटग्राम जलमी मशरान कशरान मेलमान कुर्बान द बटग्राम अदा खिस्ता खिस्ता बूटी अदा ताजा ताजा हवा गाने अदा खिस्ता खिस्ता उबो है बटग्राम को बटग्राम देखना।

0: लगल भाई जी अस्सलाम वालेकुम आमू, आप कैसे हैं? मैं बहुत जबरदस्त, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, आपका हर प्रोग्राम जबरदस्त होता है। बहुत शुक्रिया मामू। अंकल कैसे? अंकल बहुत जबरदस्त है, वो छुट्टी पर है। वाई जी, माय नेम इज नाजिश नूर फ्रॉम चे प्रोग्राम। नाजिश नाजिश सिस्टर, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इतने जबरदस्त पैगाम भेजने का। ये सर सर पहले मैं ऐसे जगह ले भाई जी, अस्सलाम वालेकुम भाई सिंह है भाई दासो, प्रोग्राम तो वाली नाराज है नारात ले। अच्छा जी भाई जमा सिस्टर द सलाम, आई एम इकरा फ्रॉम बडग्राम। इकरा खुर के ससु डेरे जदा मनना तपोस के बोलो होता सुमा सिंह वो ले जमुंगा स्केड्यूल लग बदल शिवे दे मुसर अदल त लस बजे टाइम के बल प्रोग्राम लगा लेती के ना लगे द वजे नजमुंगा टोल प्रोग्राम आ चिकम दिया लग अहो अहो शिवे दे। बहरहाल हम जो कोशिश कुमा आज तासु द पारा प्रोग्राम चकम दे दिया ओलो सुन दोलो से बजू पूरे कुमा इंशाल्लाह कल इज अवेलेबल है मा तासु प्रोग्राम आत की हां ससु डी रजत मनना इकरा खुर के ससु द मैसेज कवलो यो जहान मनना बल मैं ऐसा जगह वजह अस्सलाम वालेकुम ताज भाई बखैर डालें तासु सिंह गए प्रोग्राम जबर 50 दे जमा तरफ नाम ऑल सिस्टर त सलाम और खास सलाम अक्सा अनमोल अंदलीप नूरुलेन कुरतुलेन नाजिश सारा सोनिया जिमल सारा अलिशबा अक्सा तनहा और दगा रंगी लेवने नादिया मायरा शिराजी मनाहिल हिना इट्स मी अंसा फ्रॉम चे प्रोग्राम अंसा खुर के ससुम डेरे जेत मन नाम तासु टोले खोइन देरा यदि गिर दिन डेरे जेत मन ने को ससु खुशाल रहा तौसे। एनी हाउ जनाब कॉलम डी जतर रवान दी यो कॉल्स ओ बक्यू मालू जक ची बे बता सु खबर के गेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर खैर दी जीता सुखी बखला जवन मुखरवान दी खैर खैर दी जी सो खबरी कोई दचर तना सर आवाज दिकट की किसे लग बदल के प्लीज जी अंदलीब अंदलीब खोल के प्रोग्राम के दार के लिए सड़े में शिप बखैर आले दो तवे मतलब बुलबुल तासु खुद डेर बखना बात हुए कोशिश आज दस दोबारा प्रोग्राम चीजें पेश करा गेम शो हो आगा टाइम की वाले तरह ना मालूम टाइम है पूरे बदल दी खैर कोशिश कम चीज यो सुना दोलो सुबह जो पूरी था प्रोग्राम पेश कम सही था नो बस कल कल मसरूफियत ज्यादा भी करना खो रखे दीदी वजह बस रानशम प्रोग्राम था माफी वाड़ खैर नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम सीधे आप पेश की गई सही था अजी खुरके डुमबेरा ददा ओए द टॉपिक वाले सर बस वेलो वाड़े आया माच के में खबर हुकड़ले दब मुआशरा के इश्ते दी के निश्ते रे
1: जी भाई ना खबर रे किया कि मुआशरा के नाम तबा खुदा से हरा खैर किया जो थी
0: के नाम एहतियात पकार दे खुरके अक्सर कम गो गुरु जंग दी तरफ त ची सुमरा जने कई दी या दगरंग जम गो खवेन दी दी या दगरंग चाची गाने मामी गाने सुमरा दी नगी मतलब अलग सादा गाने विजमा पहचाने कना वगत तुमरा मालूमात ने वगा डायरेक्टली कम ची द कतन द जनाना राजी ना दट इज दैट चाला की बखपल खबर हो के आगे जनाना लरा वली कना
1: जी सर बिल्कुल अगर खबर है कि इंसान को पता न लग जाए कि पर इंसान राशि एहतियात पकार दे चुकम बार ना जी इंसान राशि लगे ना मालूम पकार दे
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल नजर साथ में पकार दिया कि ज्यादा मख्तल लिखो रहा रात का सवाल कभी नहीं पकार
0: अब देखिए अक्सर दस यू मी कहना जनान चे बाहर न राशि गदावे चे मस माल ओवर आवड़े कहना तो उसे कुर्गी ओ जनान भी नंबर डायरेक्टली अगला डिश वो बस शायद ना मतलब दे कॉल कड़ी हुई अनोर अदा गया था कहना कम मची पूरी टीम दे अगे ते कॉल वगैरह कड़ी हुई खुशहाल रहा उसे ओके भाई अल्लाह हाफिज बिल्कुल जी नादा मुसरवा बिल्बुल खुरक है ढेर से मन ने कहो आओ के ना मड़ा खबर खुलासा हम तक मड़ा तो बस एहतियात पकार दे हाँ एहतियात पकार दे एनी हाउ जिना सोसो मैसेजेस हम द प्रोग्राम पर खदी भाई जी अस्सलाम वालेकुम ताज भाई सिंह है औसम द इंजर गुल ये सारा जान ये मां सारा खुर के सो डीरे जे तमन ना ना कल कल दासी की हां औ दा जी भाई بالکل خبر ہے کولش اس قسم سوال بھی